अभी तक हो नीचे, सुबह सवेरे जाग के पड़ गए मेरे पीछे, चांद पे दुनिया पहुंची है, तुम अभी तक हो।

0: मुश्किल बड़ी आ पड़ी। अरे ना मैं राजा ना वो रानी, वो मेरे पीछे पड़ी। यू
1: आई डोंट नो
0: यू, मैं क्या बोलूं जी? यू टेल मी
1: आई डोंट नो
0: यू टेल मी, मैं क्या बोलूं जी?
2: ओ बाप
1: अल्लाह,
2: ओ दादा जी, जी और मेरी बात तो सुनो
0: बेटे।
2: ओ बाप
0: पिता जी, मेरी बात तो सुनो
2: बेटे,
0: मेरी बात तो सुनो
2: बेटे, मेरी बात तो सुनो। ओ बाप
0: पिता जी, मेरी बात तो सुनो
2: दादा
0: जी।
1: अल्लाह इस तरह भांडों की तरह नाच कर और गवैयों की तरह गा कर ये फैसला नहीं हो सकता। ये फैसला कल अदालत में होगा।
3: अरे आता कार्यक्रमातलं हे गीत ऐकणार आहोत किशोर कुमार यांनी गायलेलं। देव कोहली यांच्या या गीताला संगीत दिलं आहे शंकर जयकिशन यांनी। आणि हे गीत ऐकूयात लाल पत्थर या चित्रपटामधलं।

है तो जाना, नहीं जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

पहचाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम। यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

नहीं मेरी मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं देखो टकराना नहीं किसी से भी हारे नहीं हम।

0: सदानंद,
1: मैं अकेला रह गया चाचा जी। दीदी चली गई अपने घर, मैं अकेला रह गया।
0: अकेला? मैं जो हूं तेरा बेटा। तूने एक सन्यासी को संसारी बना दिया, अब मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा।
1: चाचा जी।
0: बेटा, तेरा भविष्य बड़ा उज्जवल है, तेरे हाथों से देश के बड़े बड़े कार्य होने वाले हैं।

0: अरे सावली, काबुल के गुलिया खान कह गए हैं कि तन हारो, मन हारो, धन दौलत हारो, खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
1: बैजू, चरिंदे जागे, परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
0: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे गम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आपने थोड़ा सा।

उसके सर पे चांद दिखेगा यानी होगा टकला। बच्चा जैसा भोला होगा तेरा दिल भर जानी, थोड़ी उसकी नाक बहेगी सोना मुख से पानी। एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे, एक निकम्मा नाकारा लिखा है भाग में तेरे, बैठा खाली प्यार करेगा तू।

मुझे वो जलवा दिखा, फिर से एक दफा मुस्कुरा, फिर से मुझ पे बिजली गिरा। अब तो आ अभी जा, अब तो आ अभी जा अभी जा। मेरी बेबी डॉल हाँ या ना, अरे कुछ तो बोल, दिल की बात मेरे दिल की बात मेरे दिल की बात सुन जा।